0: 10:11:30 हो गए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टम्प्ड।
1: From the BBC World